0: सुनत नजे के
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: पर्सनल नम्बर ब्लगलाई भदी पर्सनल मोबाइल नम्बर मी उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लगलाई र खलखाई
1: अनि बैंगरी
0: बैंगरी
1: आ
0: चर चाहिँ तले लालपर्दी
1: समलपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लग तयाई भिसा आफै न ब्याङ्क देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरुइ न योरी थनी दक्या सचेत तल परिम
0: सतर्क तन ठगी तब दक्या जोगी न
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क दक्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: दस बजे
1: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दर हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

सबों हटाओ कन्फ्यूजन गैस का सोल्यूशन इट्स अ कूल टू लीड डॉट कॉम गैस का सोल्यूशन इट्स अ कूल टू लीड डॉट कॉम